0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर मैं देती हूँ तुम्हें अपडेट्स अराउंड द वर्ल्ड से। सबसे पहले चाइना ने एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया है जो चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा। इस प्रपोजल पर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की बीजिंग विजिट के दौरान बात हुई। अगर प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो बे ऑफ बंगाल रीजन में ट्रेड और कनेक्टिविटी पर इसका असर हो सकता है। इस डिवेलपमेंट को साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है और इस पर अलग अलग देशों के अपने व्यू पॉइंट्स हैं। हम फिलहाल और अपडेट्स का वेट करेंगे। और अगर तुम टेलीग्राम, सिग्नल या व्हाट्सएप यूज करते हो तो ये अपडेट तुम्हारे लिए है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन अथॉरिटीज ने यूजर नेम फीचर को लेकर टेलीग्राम और सिग्नल से सेफगार्ड्स और इम्पर्सनेशन प्रोटेक्शन के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है। इससे पहले व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को भी नोटिस भेजा गया था। And now from the world of entertainment, Taylor Swift और Travis Kelce को लेकर reports आ रही हैं कि शायद दोनों ने private ceremony में शादी already कर ली है और New York में grand celebrations की तैयारी चल रही है। Official confirmation अभी तक नहीं आया है तो फिलहाल इस अपडेट को rumor mill with a disclaimer समझिए। लेकिन सोशल मीडिया डिटेक्टिव ने ऑलरेडी FBI को कंपटीशन दे दिया है। दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na fiatbala, burga.
1: Milchi, burga. Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो कर, मेरे बॉस सो रहे हैं। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आवाज खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्या, क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का। अभी आग लगा था इसमें, इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो। आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
1: पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था।
1: आपने कब से कह रहे
2: हैं? हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है
2: आपसे। मरवाओ के क्या उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
2: आई लव यू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi family. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में सुन रहे थे Mirchi Mornings. Auntie directly from Bollywood is that Mr. Perfectionist Aamir Khan ने officially confirm कर दिया है कि वो 5th of July को Gauri Spratt से शादी करने वाले हैं. This is Aamir Khan's third wedding. और Bollywood style में destination wedding भी नहीं होने वाली है, बल्कि एक छोटी सी intimate ceremony है घर पर. ना बस सिर्फ और सिर्फ family और बचपन के close friends invited हैं. आमिर ने सबसे पहले एक बात कही थी कि हमें अपनी दुआओं में याद रखना और ब्लेसिंग्स देना, विच इज प्रीटी सिंपल एंड क्लासिक एंड डायरेक्टली दिल से, राइट? मुझे लगता है कभी कभी ना बेस्ट सेलिब्रेशंस वो होते हैं जहां पर गेस्ट से ज्यादा इमोशंस और लव होता है. एंड नाउ दैट यू आर थिंकिंग अबाउट लव एंड इमोशंस, सो लेट मी रिमाइंड यू कि आरके ज्वेल्स पर एक मस्त सा ऑफर चल रहा है. बस स्टोर को विजिट करो, स्क्रैच काट लो और एक्साइटिंग ऑफर्स जीतने का मौका तुम्हें मिल सकता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज You don't have to purchase anything. There is no purchase required. हाँ जी, शॉपिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लक भी टेस्ट हो जाएगा. Of course, terms and conditions applied हैं. तो इस लॉन्ग वीकेंड में जाकर फटाफट से चेकआउट करो आरके ज्वेल्स. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में, सुन रहे थे Mirchi Mornings. And also check out my socials, Insta और X पर मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर number है 9033 Mirchi. That's 9033 6472 44. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऐसा कहते हैं बर्थडे पर ना एज नहीं काउंट करनी चाहिए बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए, और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला

0: Gold lovers and jewelry wish listers, time now is for a quick gold rate update on Virchay Mornings. Mera naam hai Priscilla.
1: Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold rating at $4,150. 4,150 के साथ आज गोल्ड की प्राइस कल से अबाउट $100 चीपर ट्रेड कर रहे हैं. राज जोल्स के साथ इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें. वो खूबसूरत सा तोहफा 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, गोल्ड ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, प्लैटिनम बैंड्स, प्लैटिनम मेंस कफ फादर्स डे की सिलेक्शन के लिए घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट पे 0 डाउन पेमेंट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 किश्तों में पैसे दें. आइए फादर्स डे की सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
0: There you go, your sparkle report for the day is here. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्सपर्ट. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi fam. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Hour का 3 only on Mirchi Mornings. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के विजिट के दौरान एआई पावर्ड थियोडोर रूजवेल्ट रिक्रिएशन के साथ इंटरैक्शन किया. कॉन्वर्सेशन में पनामा कैनाल भी डिस्कस हुआ, जिसने फिर से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को लेकर पुरानी डिबेट को स्पॉटलाइट में ला दिया है. एंड नंबर टू पर इंडिया में अमरनाथ यात्रा ऑफिशियली शुरू हो चुकी है. पहले बैचेस ऑफ पिलग्रिम्स बालताल और ननवान बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गए हैं. ये 57 डेज की यात्रा 28 अगस्त तक चलने वाली है और अथॉरिटीज ने पिलग्रिम्स की सेफ्टी और स्मूथ अरेंजमेंट्स के लिए एक्सटेंसिव प्रेपरेशंस की हैं. जो भी यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें सेफ ट्रैवल्स एंड बेस्ट विशेज. एंड फाइनली, राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट केस में अक्यूज्ड लवकुश मिश्रा की वाइफ को अलेजेड अनऑथराइज्ड हाउस कंस्ट्रक्शन के संबंध में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस इश्यू किया है. उन्हें अपना रिस्पांस देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. मैटर लीगल प्रोसेस में है और आगे की प्रोसीडिंग्स अथॉरिटी के थ्रू ही होने वाली है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करने के लिए Mirchi Pris इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 Mirchi. दैट्स 9033 6472444. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Iskra bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka.
1: Milci burka. Hello.
2: Hello भाई, wrong number से बात कर रहा है, wrong number से.
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, wrong number से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है, कौन?
2: ओ, मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो
2: जब डर गया था,
1: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: हूँ? फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल हट।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. और अब बारी आ चुकी है कि पता करें हम सितारे क्या कह रहे हैं, आज हमारा दिन कैसा जाने वाला है.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: इरेज यानी मेष राशि, आज स्पीड कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा रखो. सब तुम्हारी पेस मैच नहीं कर सकते एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके. कभी कभी सोलो फ्लाइट ही स्मूथ लैंडिंग कराती है. लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी वृषभ राशि, क्विक डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं. अगर बाद में थोड़ा सा डाउट आए तो रिलैक्स करने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. लकी कलर फॉर यू इज स्टील. लकी नंबर इज 8. जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, बिग चेंजेस आर नॉकिंग, दरवाजा खोल दो. तुम ऑलरेडी जानते हो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस तुम्हें लेने की देर है. लकी कलर इज एम्बर. लकी नंबर इज 29. कैंसर यानी कर्क राशि, जो इशू तुम पोस्टपोन करते जा रहे हो उसका रिमाइंड मी टुमारो बटन आज एक्सपायर हो गया है, फिनिश इट या फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 5. लियो यानी कि सिंह राशि, थोड़ी सी ईगो साइड पर रखो और थोड़ी सी स्माइल फेस पर रखो. एक कॉन्वर्सेशन बड़ी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को गुड बाय बोल सकती है. यू हैव टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 31. वर्गो यानी कन्या राशि, एक गोल को चूज करो और उसके पीछे लग जाओ हाथ धोकर. स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही माना जाता है. लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन. लकी नंबर इज 29. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन पार्ट 1. पार्ट 2 लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची फ्रेश माल।
4: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: Hey, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, वेलकम बैक। लेट्स फाइंड आउट आज हमारे स्टार्स क्या कह रहे हैं।
3: मिर्ची राशि जोन।
2: लिब्रा यानी तुला राशि, करियर को लेकर नई डायरेक्शन मिल सकती है। अपने कंफर्ट जोन से कुछ पैर बाहर निकालो, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। लकी कलर इज पिंक, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज एक बोरिंग सा टास्क तुम्हारा वेट कर रहा है जिसे करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन करना पड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, मतलब तभी तो आगे बढ़ोगे। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, माइंड को रिफ्रेश करो, नए आइडियाज की एंट्री होने दो यार, ओल्ड थिंकिंग को थोड़ा सा अनइंस्टॉल करो और नई थिंकिंग को थोड़ा सा इंस्टॉल करो, समझे। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू, लकी नंबर इज 36। केप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, बिजनेस या मनी को लेकर पॉजिटिविटी रखो अपने दिमाग में। कॉन्फिडेंस भी एक इन्वेस्टमेंट होता है और इसका रिटर्न काफी अच्छा मिलता है अगर लगातार इसमें इन्वेस्ट करते रहो तो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 4। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कभी कभी गोल बड़ा नहीं होता बल्कि टाइमिंग गलत हो जाती है। प्लान को थोड़ा सा ट्वीक करो, सपने बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके अराउंड स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन, लकी नंबर इज 27। एंड फाइनली पाइसीज यानी कि मीन राशि, जो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं उन्हें रिप्लाई वर्ड से नहीं बल्कि अपने कर्मों से दो। आज तुम्हारी एनर्जी फुल मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी वाली है, उस एनर्जी को बरकरार रखो और अपना वीकेंड और ऑसम बना लो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 19। And that's the end of Rashi Zone Part Dvitiya. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, of course, this is Mirchi Mornings. Connect करना चाहते हो मुझसे तो Insta और X पर मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: अच्छा बोतला

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: पता है लाइफ में सबसे अच्छा प्लेलिस्ट वो होता है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम भी ना खत्म हो गया है, यानी कि आज के शो का टाइम खत्म हो चुका है। ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं खत्म हो जाता है हमारी सैलरीज की तरह। जाने से पहले तुम्हें एक बात बताकर जाती हूँ कि फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अल्फा को 1.5 स्टार्स दिए हैं आउट ऑफ 5 और उन्होंने अपने रिव्यू में इसे YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे वीक फिल्म बताया है। उनका कहना है कि फ्रेंचाइज को फिर से वो इमोशनल कनेक्ट और रिलेटेबिलिटी लानी होगी जिसने ऑडियंसेस को पहले अट्रैक्ट किया था। उन्होंने ये भी लिखा है कि आलिया भट्ट ने पूरी मेहनत की है लेकिन उनके हिसाब से वो इस पर्टिकुलर रोल के लिए मिसकास्ट लगी। अब देखो, रिव्यूज भी ट्रेलर्स की तरह होते हैं, एक ओपिनियन फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता। कोई फिल्म किसी को ब्लॉकबस्टर लगती है, कोई फिल्म किसी को पॉपकॉर्न ब्रेक लगती है या फिर किसी को वर्थ वॉचिंग भी नहीं लगती है। इसीलिए अगर तुम देखने का प्लान बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मी अपना खुद का रिव्यू लेकर जाना चाहिए, मतलब मूवी देखने के बाद अपना खुद का ओपिनियन बनाना चाहिए। एंड आई फील हर मूवी इज अ वन टाइम वॉच। वैसे तुम्हारे वीकेंड पे करने को कुछ नहीं है तो मैंने प्लान तो सेट कर दिया तुम्हारा। अब जाने के पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम मुझे फॉलो कर लो फटाफट से। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय है, हम लोग तुमसे मंडे को सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: किशोर कुमार के सबसे बड़े बेटे अमित कुमार, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनके एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुंदर गाने से जुड़ा एक इंसिडेंट उन्होंने एक टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: एक गाना था, मैं ही गाया था, रोज रोज आंखों तले। वो गाने में तीन अंतरे आशा जी की थे, टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त, उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के मंदा की नहीं गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो उनके वजह से एक अंतरा आया, थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोर दा को फोन करो यार। तो किशोर दा का नाम सुन के डड्डू से किशोर दा क्यों, ठीक है चलो अमित को फोन करो यार। पंचम दा ने फोन किया और बाबा ने उठाया, हेलो आपका लड़का क्या कर रहा है? बोले तो मालूम नहीं सोता है वो, उसको जगाए उसको गाना मिल गया। तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ, बोले आपका बजट ही नहीं है।
0: ये बढ़िया था फिल्म मेकर्स का है, बजट है तो पिताजी को साइन कर लो, बजट नहीं है तो बेटा जी को साइन कर लो। खैर ये सब छोड़ो, ये सुंदर सा गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा था इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने एकदम सही कह रहे
4: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
3: नहीं बोलना, नहीं बोलना।
4: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसे ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
4: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके,
4: आई लव यू।
3: आई लव यू टू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: पिता किशोर कुमार के साथ उनकी शुरुआती यादें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या मेमोरीज शेयर की थी।
1: जब 3-4 साल की उम्र में मुझे पता चला, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, के यस ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये है, अरे ये तो बम्बई है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, छोटा सा घर है, और ये आदमी जो मैं देखता हूँ रोज गाड़ी में आता है और आधी मूछें लगा के मेकअप करके आके खाना खा के लंच टाइम चला जाता है, ये कौन है। तो सोचता रहता था कौन है। तो एक दिन मैंने अपने माँ से कहा कि कौन है ये आदमी, माँ ये कौन है, तेरा बाप है। ऐसा मुझे बचपन में धीरे धीरे जब होश संभाला तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ माई चाइल्डहुड, दिस इज़ माई डोमेन, यू नो, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो ये मुझे याद है छोटा छोटा, मतलब कि यू नो देव साहब आते थे काफ़ी पिताजी से मिलने वो उस वक्त, you know, these are the things I remember.
0: Well, अमित कुमार की कुछ और ब्यूटीफुल मेमोरीज साथ में उनकी जर्नी भी सुनेंगे यहीं पर मिर्ची पर पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और फिलहाल तो ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, मूवी का नाम लव स्टोरी।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट हिट हिट हिट गाना,
3: हिट गाना,
2: हिट गाना।
4: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

0: अमित कुमार जब 8 साल के थे तो उनकी मदर रूमा गुहा और उनके फादर किशोर कुमार का डिवोर्स हो गया, तो अमित कुमार अपनी मदर के साथ कलकत्ता में रहते थे और किशोर कुमार बॉम्बे में। फिर कुछ ऐसा मैटर हो गया कि इनकी मम्मा ने इनके फादर से, किशोर कुमार से, इनकी शिकायत लगाई और किशोर दा को कलकत्ता आना पड़ा। वो क्या हुआ था सुनिए, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने शेयर किया था।
1: जब मैं 17-18 साल का था कलकत्ते में, उन दिनों 1970 में मैं कलकत्ते में गली गली में गाना शुरू किया। मैंने उत्तम बाबू के जो इलाका भवानीपुर जो आज भी है, उनके वहाँ पे दुर्गा पूजा तो मैं गया था। तो उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग मिलके ग्रुप एमेचर म्यूजिशियंस, मैंने प्रिपेयर किए थे कुछ 5-6 गाने, बट आई हैड टू सिंग अबाउट 10 सॉन्ग्स, जिसे कहते आई शेड माई इनिबिशंस, स्टेज फ्राइड निकल गया और इतना अच्छा गाया मैं। तो वो उसके बाद मैंने जो शुरू किया प्रोग्राम कलकत्ते में, तो वो पिताजी को पता चला, माँ ने फ़ोन करके कहा कि वो तो पढ़ाई लिखाई में एकदम मन नहीं है, इधर उधर घूमता फिरता है, आपके आप ही के गाने गाता है। तो पिताजी बहुत खुश हो गए, वेरी गुड वेरी गुड, मैं आता हूँ कलकत्ता।
0: वेल, किशोर दा कलकत्ता पहुंचे और अपने बेटे को बॉम्बे लेकर आ गए। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

0: अमित कुमार जब 17-18 साल के थे तो कलकत्ता में अलग अलग प्रोग्राम्स में गाने गाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बात से इनकी माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी। उन्होंने किशोर कुमार को फोन किया बॉम्बे में कि भाई देखिए आपका बेटा तो रिलीजियस प्रोग्राम्स में भी फिल्मी गाने गाता है और आपके ही गाने गाता है, पढ़ाई लिखाई ये करता नहीं है, अब आप ही आके देखिए इसको। और किशोर दा पहुँच गए कोलकाता। फिर क्या हुआ सुनिए, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: तो वो कलकत्ता है तो उन दिनों मेरा एक प्रोग्राम था रविंद्र सदन में। He saw the program. He came specially to see the program. तो मुझे कहा कि when you'll go on the stage, you won't get nervous, no? Because I'll be sitting in front of you. बोले why? मैं उन्होंने तो कहा मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। बोले नहीं लेकिन क्या होगा कि तुमको disturb हो जाएगा, तुम एक काम करो मेरे को सामने सीट मत देना, तो मुझे कहीं स्टेज के पीछे कहीं बैठाओ, क्योंकि सामने मैं बैठूंगा तो कोई तुम्हारा गाना सुनेगा नहीं। तो he was right. हमने वैसे ही किया, हमने उसको जहाँ से लाइटिंग होती है ना ऊपर वहाँ पे बैठा दिया। अब मैं गाना गा रहा हूँ, अब वो वहाँ से देख रहे हैं मुझे, तो he is enjoying. I broke the ice. तो योडलिंग किया, वो इतने खुश हुए, वो मेरे माता जी से कहा कि तो वंडरफुल, बहुत अच्छा गाता है, उसको बॉम्बे भेजो।
0: तो इसी तरह लड़का बॉम्बे आ गया अपने प्लेबैक सिंगिंग के करियर की शुरुआत करने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

ఏనుగులు

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: 1970 की बात होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जब किशोर दा को अपनी एक्स वाइफ रूमा गुहा से पता चला कि उनके बेटे अमित कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, यहाँ वहाँ प्रोग्राम्स इवेंट्स में गाने गाते फिरते हैं, किशोर दा कलकत्ता पहुँचे, अपने बेटे का एक इवेंट अटेंड किया, उनको गाता देख कर खुश हो गए और उनको बॉम्बे ले आए। वहाँ पे क्या हुआ, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: उसके बाद मुझे बॉम्बे लाए, यहाँ पे उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम रखा, डैडी किशोर एंड सनी अमित टुगेदर ऑन स्टेज, वेरी इंट्रोड्यूस्ड मी 1971। बोले देखो ये तुम्हारा पहला, मैं तुम्हें स्टेज पर प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ऐसा करना कि मैं गाना गा रहा हूँ तुम बजा रहे हो, तो मैं जैसे गाना शुरू करूंगा तुम वहां से उठ के आके मेरे को कंधे पे टैप करोगे और मैं घूमूंगा एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू। तो वो गाना था फिल्म दो चोर करके, एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें गाना था मेरी जान कहना मानो। तो वो जैसे वो गाना शुरू किया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हो गया, नहीं थी सेड मेरी जान कहना मानो, तब तक मैं आ गया, उठ के आके तो मैं ऐसा किया, दोनों घूमा, तो मैंने कहा मेरे बाप अब तुम जाओ, मुझको गाने का मौका तो दो, तुमने दिया करके।
0: वेल, बाप बेटे की इस जुगलबंदी का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गरम हूँ, अरे बाप रे बाप, आ, हा, हा, हा, हा, हा, हा, डर गया ना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं?
3: ऑफकोर्स
4: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासेज से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने हैं। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
4: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस हमारी मिसेज की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे
5: रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

0: हुई मॉडल पूरा ना लगता है।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती।
2: टीनेज में जब अमित कुमार में सिंगिंग के लक्षण दिखाई देने लगे तो किशोर दा उन्हें कलकत्ता से बॉम्बे ले आए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जब बॉम्बे ले आए तो बकायदा एक सिंगिंग इवेंट में, एक प्रोग्राम में किशोर दा ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए अमित कुमार ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
3: बॉम्बे आ गया पिताजी के साथ, तो उनके फिल्मों में गाता था ही मैं। बाहर पूछते थे सब, लक्ष्मी जी प्यारे भाई, तो सब पूछते थे कि वो गाता है, गाता है। तो लक्ष्मी जी तो कमाल का, पिताजी को बोलते थे मैंने सुना अमित गाता है, बोला हाँ वो गाता है, मुड़की उड़की मारता है। जब बाबा मुझे बोलते लक्ष्मी ने ऐसा क्यों पूछा मुड़की उड़की मारता है, तो मुझे बोले मुझे कुछ आता ही नहीं, आई वॉज रॉ यू नो। कहते मैं तो कुछ मालूम नहीं मुझे, बोले कुछ नहीं मालूम की बात नहीं, तुमको अगर गाना सीखना है तो पहले सहगल साहब के गाने प्रैक्टिस। तो मैंने बोला सहगल साहब नेजल, बोले नहीं ऐसा नहीं है, ही वॉज अ वेरी बिग सहगल साहब भक्त। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि देखो पहले से क्रिटिसाइज नहीं करने का, पहले तुम सहगल साहब के गाने सुनो, ये तीन गाने मैं तुम्हें देता हूँ, इसको प्रैक्टिस करो। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि इट इज नॉट इजी टू सिंग सहगल साहब सॉन्ग। तो फिर मुझे ऐसे करते करते इंटरेस्ट उन्होंने जगाया।
2: चलिए इसी बात पे इंटरेस्टिंग सा गाना सुन लेते हैं अमित कुमार की आवाज में, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा है, मूवी का नाम तेरी कसम। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
4: उठ सबके कदम, देखो रम पम पम

0: अरे बांगड़ू, तो संगीत सीखेगा रे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अर्ली 70s में जब किशोर दा को रियलाइज हुआ कि उनके बेटे में टैलेंट है, तो उसे कलकत्ता से बॉम्बे ले आए। अमित कुमार ने पहले किशोर दा की फिल्मों में गाना शुरू किया। फिर और म्यूजिक डायरेक्टर्स जब अमित कुमार के बारे में पूछताछ करने लगे, तो ये भी पूछने लगे कि क्या वो क्लासिकल गाने गा पाएगा। एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: मैंने कहा कि मैं क्लासिकल सीखूंगा एक दिन, तो वो हंसने लगे एकदम से। पिताजी के ये थे, वो भी क्लासिकल उतना मतलब वो सुनते थे क्लासिकल बचपन से बहुत। मैंने सुना कि ही यूज्ड टू गो फॉर दीज म्यूजिकल शोज आल्सो, विलायत खान साहब, बड़े गुलाम अली सब देखते थे, रविशंकर। तो उन्होंने कहा मनादा को फोन किया, तो मनादा को फोन करके बोला, मनादा मेरा लड़का बोलता क्लासिकल सीखा, तो वो भी हंसना शुरू कर दिया, भेज दो मेरे पास। मनादा मुझे देखते ही हंस रहे, तू क्लासिकल गाएगा? बोले क्यों, मैं गाने? बोले ठीक है, बट सीरियसली? बोला हाँ। तो ही अपॉइंटेड गुलाम मुस्तफा खान साहब, उनके साथ मैं 6 महीना सीखा, रिलीजियसली सीखा, लेकिन कुछ घुसा नहीं अंदर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला मैं क्या कर रहा हूँ, तो पिताजी बोल रहे थे, मैं बोला था ना कि तेरे पे पेशेंस है नहीं, इतना इजी नहीं है क्लासिकल। उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस।
0: तो ठीक है, फिर एक हल्का फुल्का लाइट सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: चांद की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो ओहो ओहो ओहो।

0: अर्ली 70s में प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाने अमित कुमार कलकत्ता से बॉम्बे आ गए. ऑफकोर्स किशोर दा उनको लेकर आ गए. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. तब इन पर धुन सवार हुई कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सीखना है. इन्होंने 6 महीने बड़ी शिद्दत से सीखा भी, लेकिन उसके बाद न हो पाया. पर उसके बाद हुआ क्या, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या शेयर किया था.
1: उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस. लेकिन पैरेलली मैं उनके साथ शोज करता रहा. एक होता ना डर, वो स्टेज का वो फ्राइड निकल गया. और फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स खुद, जैसे पहले मुझे गाना गवाया किशोर कुमार के घर के बाहर, मुझे गाना गवाया सपन जगमोहन. एक फिल्म बनी थी रामसे ब्रदर्स की, दरवाजा, उसमें गाना था. दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. पिताजी आए थे रिकॉर्डिंग में, महबूब स्टूडियो में विश करने आए थे. गाने में बहुत अच्छा गाना था. होश में हम कहाँ

0: में। अच्छा गाना था।
1: well, इनका ये गाना तो 1973 में रिकॉर्ड हुआ था और फिल्म जाके 1978 में रिलीज हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे सुनेंगे वो गाना जिसमें मैंने अमित कुमार साहब की आवाज पहली बार सुनी थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।
2: ओ

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: अमित कुमार ने अपनी प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत अपने फादर किशोर कुमार की फिल्मों से की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बाद फिर और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी इनको अप्रोच करने लगे। सबसे पहले सपन जगमोहन ने इनसे 1973 में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद क्या हुआ, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने ये शेयर किया था।
1: सेकंड सॉन्ग मदन मोहन, किशोर तेरा लड़का गाना गाता है, तो पिताजी बोले जाओ मदन मोहन का गाना गाना है। आशा जी के साथ डुएट था, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था। है शाम बड़ी मतवाली, है शाम बड़ी मतवाली और आसमान पे लाली, इस लाली पे रंग तेरा, जैसा सिखाते ना, गुलाबी हो गया मदन जी, मैं गुलाबी हो। बोले वाह वाह वाह, कितना अच्छा किशोर का बच्चा, अच्छा गाता है। उसके बाद थर्ड नंबर हुआ सलील चौधरी। वो पिक्चर पता नहीं बनी या नहीं बनी मुझे मालूम। वो गाना ऐसा था, हमको किसने जाना है, हम किसी को क्या जाने, हमको किसने माना है, हम किसी को क्यों माने, वी आर फ्री यू गो टू हेल। उसके बाद एक फिल्म आई जिसमें कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट जय कुमार पाटे, उन्होंने मुझे गवाया। वो फिल्म थी जान हाजिर है, जिसमें शेखर कपूर हीरो थे, विजय आनंद गोल्डी आनंद, विजय आनंद साहब प्रोड्यूसर थे। नवकेतन की फिल्म जान हाजिर है, वो भी पिक्चर फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को बुक।
0: वेल, इन सब के बाद इनकी लाइफ में आया इनका जैकपॉट गाना, जिसके बारे में करेंगे बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्च।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो
3: जब डर गया था
2: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
2: वाली बातें कर रहा है क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
3: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल अब जा।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पुरानी जीन्स with Charu, only on

0: किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने से जुड़ा एक इंसिडेंट अमित कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
1: उस वक्त ऐसा हुआ कि एक दिन रिहर्सल पिताजी करने गए पंचमदा के घर, तो मुझे कहा कि तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, बड़ा चल रिहर्सल है।
2: चलो।
1: तो वो गया मैं रिहर्सल में, अभी भी याद है मनादा भी थे वहाँ पे, मनादा और पिताजी का एक डुएट था एक, उसका रिहर्सल। तो मैं बैठा था, तो मैं तो उन्हीं को देख रहा था, पंचमदा को देख रहा था, कब हारमोनियम बजा रहे। बाद में उन्होंने मुझे देखा, बोला अरे अमित कैसा है तू, मैंने सुना तू गाना गा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गाना सुना। तो मैं एकदम घबरा गया, तो मैंने गाना गाया, झुमरू ही गाया मैं, बहुत बकवास गाया था मैं, मतलब नर्वस हो गया था। तो जब वापस घर आ रहे थे तो गाड़ी में पिताजी ने कहा कि
3: तेरा चांस गया,
1: स्टार्टेड ही वाज वेरी अनहैप्पी यू नो। शाम को फोन आया, बाबा ने उठाया, अरे पंचम क्या हुआ? बोले दादा अमित को कल भेजो मेरे पास फिल्म सेंटर, तो गाना गवाना है। तो मे बी ही वाज टेस्टिंग माय वॉइस।
0: इस गाने के बारे में भी करेंगे बात, लेकिन अभी वो गाना सुनेंगे जिसमें बड़ी सारी फैमिली वाइब्स है, क्योंकि अमित कुमार किशोर कुमार की आवाज है, आशा भोसले जी की आवाज है, कॉम्पोजिशन RD बर्मन की। ये गाना लिखा है गुलशन बावरा ने, मूवी का नाम कस्मे वादे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: अमित कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो है बालिका वधु फिल्म का गाना बड़े अच्छे लगते हैं। सुनिए आरडी बर्मन के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में अमित कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बिकॉज़ बालिका वधु वाज बीइंग प्लान्ड फिल्म, तो उनको सचिन के लिए यंग वॉइस चाहिए था। उनके घर गया सवेरे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और लेके गए फिल्म सेंटर पे, गाना सिखाया एंड बड़े अच्छे लगते वॉज रिकॉर्डेड 1974 एंड में। बड़े

0: मैंने उस गाने का नाम भी रखा है, माय ब्रेड एंड बटर सॉन्ग। उसी गाना से मेरा एक फाउंडेशन तो जरूर हुआ। और पिताजी बहुत पीछे पड़ते थे, जब भी कोई स्टेज शो हो तो जैसे पिताजी के बाद मुझे गाना है, तो उस तक मेरा यही एक ही गाना था, तो मैं जाके बड़ा बकबक करता था स्टेज पर, अब मैं आपके सामने जो गीत पेश करूंगा, ये मुझे ऐसा किया था, ऐसा किया था, बड़ बड़ बड़ पीछे विंग्स में पिताजी खड़े होकर बोले, गाना गाता कोई को नहीं, इतना बकबक कर रहा। फिर मैंने बड़े चक्के तो वहां से बड़े
1: तो बड़े के चक्कर में इस छोटे को बड़े से काफी पड़े हैं। सुन लेते हैं ये आइकॉनिक गाना, रिटन बाय आनंद बख्शी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: बड़े

0: 1976 की फिल्म बालिका वधु का आइकॉनिक गाना बड़े अच्छे लगते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अमित कुमार के करियर का ये एक टर्निंग पॉइंट माइलस्टोन गाना था, लेकिन उनके हिसाब से सही मायने में उनको सक्सेस किस गाने से मिली? एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: सक्सेसफुल हुआ मैं मेरे ख्याल से 1980 में, 81 में लव स्टोरी एक फिल्म बनी थी जिसमें सब गाने हिट हुए। याद आ रही है, देखो मैंने देखा एक सपना, कुमार गौरव के साथ मेरा टीम हो गया, अगेन पंचम दा ने गवाया मुझे, एंड ही यूज्ड टू हेट द सॉन्ग्स ऑफ लव स्टोरी। खुद म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा के खुद के ट्यून, बट ही यूज्ड टू हेट। मुझे बोलते थे क्या क्या गाना तेरे को पसंद है, मतलब कौन सा, याद आ रही है, मतलब बाबा तुम्हारा है, इट इज यू, अरे देखना एक नहीं चलेगी, ऐसी चली गाना। फिर मैंने उनको फोन करके बोला आप बोलो, चुप ठीक है, तू तो स्टार बन गया। और आफ्टर माय फादर ही वाज द पर्सन हु रियली पुट मी देयर, चल कम ऑन।
0: वेल, इस गाने के लिए अमित कुमार को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो सुन लेते हैं दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। थोड़ा सैड है, लेकिन उदासी में भी कितनी खूबसूरती होती है। ये उन गानों में से एक है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना होते हुए भी आपको ब्रेकअप का एहसास दिला देता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: यार देखो, कुछ चीजों को कॉल आउट करना बहुत जरूरी होता है।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वो बुरा बिहेवियर हो या फॉर दैट मैटर बुरा कंटेंट ही क्यों ना हो, मिर्चे पे ट्यून्ड इन हो आप। एंड रिसेंटली अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप का टीजर आउट हुआ, जिसने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है। सबसे पहले बता दूं, इस मूवी में यश के साथ साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत लीड रोल्स में नजर आ रही है, बट अपेरेंटली फिल्म के टीजर में इनके बस ब्लिंक एंड मिस शॉट्स नजर आए हैं। In fact, the entire marketing campaign of the movie revolves around कि भाई ladies take more time to come. और तो और इस टीजर में जिस हिसाब के सजेस्टिव विजुअल्स डाले गए हैं इज अ बिट कंसर्निंग एज वेल। लेट मी रिमाइंड यू, टीजर के एंड में जब आप जाएंगे ना तो एक प्रोवोकेटिव विजुअल आता है ऑफ यश ओवर पावरिंग फीमेल गुंडिया, जिसमें बाई दी एंड वो एक बंदी के मुंह में बंदूक डाल के बैठे हैं। और जिस तरीके से उस इंटायर चीज को पिक्चराइज किया गया है, OMG भाई, टॉक्सिक नाम रख देने से आप अपने

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La firma la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी।

0: मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार। मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना। और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं। लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
0: नहीं मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
0: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
0: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
0: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
0: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
0: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेस की।
0: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
0: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ
0: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे हैं,
0: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं यार, तू मजे ले रहा फोन करके?
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। यार, इन्होंने तो मीडिया से ब्रेक लिया था, वो भी एक नहीं दो नहीं 18 महीनों के लिए, लेकिन अब तो ये स्टोरी और पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह की। यार, सो बेसिकली आदित्य धर डायरेक्टोरियल इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर जो है इज हेडिंग टू जापान, क्योंकि 10 जुलाई को ये फिल्म वहां भी रिलीज होगी, जिसके बारे में रणवीर ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया। एंड दैट मेड मी थिंक कि भाई, इन्होंने तो 18 महीनों का ब्रेक लिया था फ्रॉम मीडिया, बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज्ड कि मीडिया और सोशल मीडिया में डिफरेंस होता है। श्रुति, बाबा निराला की कहानी में और ड्रामा बढ़ेगा विद सीजन 4। वेल, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश झा की मच लव्ड सीरीज आश्रम के बारे में, जिस फ्रेंचाइज के फोर्थ पार्ट की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। द टेंटेटिव डेट इज अराउंड मिड अगस्त। लेकिन भैया, सबसे पहली चीज जो इस टीजर के बारे में मैंने नोटिस की इज द बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसने मेरे दिल में एक्साइटमेंट का लेवल और भी ज्यादा ऊपर कर दिया है। ताकि इमरान हाशमी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है यार, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ फीलिंग, ही इज एन एक्सपीरियंस। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट। चंदा

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। ओके डोंट किल मी फॉर दैट, बट मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। नॉटी माइंड कहाँ चले जाता है आपका। एनीवे, सो हर रोज की तरह आज भी मैं एक नहीं दो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ। एक हमें मिल चुके हैं, दैट इज गौतम जी, बट उन्होंने हमारे इस गेम को जिस लेवल पे पहुंचाया उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ हैं गगन बत्रा। तो सलमान खान की फिल्म जिसमें वो डॉक्टर बने हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उससे आगे का सवाल है कि मैंने प्यार क्यों किया में उनकी सेक्रेटरी कौन है?
2: सुष्मिता सेन।
0: क्या बात है, सुष्मिता सेन की फिल्म जिसमें वो कॉलेज की टीचर बनी है,
2: जिसमें वो कॉलेज की मैं हूँ ना।
0: बहुत बढ़िया। मैं हूँ ना में भुलक्कड़ कॉलेज प्रिंसिपल कौन है?
2: बोमन ईरानी।
0: हाँ जी, बोमन ईरानी की फिल्म जिसमें वो मेडिकल कॉलेज के डीन बने हैं,
2: मुन्ना भाई MBBS।
0: बहुत बढ़िया। मुन्ना भाई MBBS में सर्किट के दोस्त कौन है?
2: मुन्ना भाई इटसेल्फ।
0: डेफिनेटली उनका।
2: संजय दत्त।
0: हाँ संजय दत्त की फिल्म जिसमें वो मांडवा नहीं देते,
2: अग्निपथ।
0: हाँ जी, अग्निपथ में कांचा चीना को कौन मारता है?
2: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में एक सीन में स्टैचू बने हैं?
2: वो धूम।
0: कौन सा?
2: धूम टू।
0: हाँ, धूम टू में फीमेल विलन कौन बनी है?
2: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय किस फिल्म में मरने के बाद सारे एक्टर्स के आजू बाजू डांस करती है?
2: मोहब्बतें।
0: बहुत बढ़िया। मोहब्बतें में वायलिन बजाने वाले प्रोफेसर कौन है?
2: शाहरुख।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है,
2: डॉन रीमेक।
0: डॉन 2 की जंगली बिल्ली कौन है?
2: प्रियंका।

0: अरसे
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: ओ हेलो, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो हर रोज की बात ही, इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्मची, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरे इंस्टा पे जाके डीएम कीजिए अपना नंबर, ताकि मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं गौतम जी, आर यू रेडी?
3: हाँ बिल्कुल तैयार हैं।
2: ओके जी, तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जिसमें गांव वाले क्रिकेट खेलते हैं?
3: लगान।
2: क्या बात है, लगान के भुवन कौन है?
3: आमिर खान।
2: आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस किस फिल्म में होती है?
3: आमिर खान गजनी।
2: गजनी में कल्पना वॉज किल्ड, कल्पना कौन है?
3: कल्पना उसकी गर्लफ्रेंड होती है आमिर खान की।
2: डेफिनेटली, नाम आप भूल रहे हैं शायद एक्ट्रेस का।
3: बहुत टाइम हो गया है, आई एम अनेबल टू रिकॉल। शी इज मैरिड टू माइक्रोमैक्स ओनर, दैट आई नो।
2: सारा डिटेल बताया।
3: कल्पना इज आसिन बेसिकली।
2: ओके, आसिन कौन सी मूवी में ढिंका चिका करती हैं?
3: आई थिंक मूवी कॉल्ड रेडी।
2: बहुत बढ़िया, रेडी में मेल लीड कौन है?
3: सलमान खान।
2: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो डॉक्टर बने हैं?
3: सलमान खान डॉक्टर बने हैं। ये ट्रिकी हो गया थोड़ा। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया?
2: नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
3: ओके ओके, नाइस नाइस। ओके,
2: मैंने प्यार क्यों किया मैं उनकी सेक्रेटरी कौन बनी है?
3: नो आइडिया एट ऑल। ब्लैंक ऑन दिस मूवी, ब्लैंक ऑन दिस मूवी।
2: ओके, नेवर माइंड सर। बट इट वॉज लवली प्लेइंग द गेम विद यू, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया। अब इसके आगे का चेन देखते हैं कौन कम्प्लीट कर पाता है।
3: All right.
2: But आपने ये गेम जिस लेवल तक पहुंचाया है उसके लिए ये टैग तो आपको देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्म जी।
2: So bro, अगर इसके आगे का गेम खेलना चाहते हो तो यू नो द ड्रिल, बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।
4: Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La pierpa la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तू इतनी धीरे के बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था.
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी.
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से. अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
1: जाना जरूरी है.
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई.
2: अच्छा, तो दुबई जाना है
1: भाई? जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
2: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
1: ठीक है ठीक है.
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
1: आपने सही कह रहे
2: हैं. हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ.
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
1: करवा देना भी है आपसे.
2: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
1: सॉरी सॉरी सॉरी.
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
1: Okay, okay.
2: I love you.
1: I love you too.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ. Only on मिर्ची. It's hot.
5: ये पजा.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची. It's hot.

0: They say it can make or break a film.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: Well, बाबू मोशाय, फिल्मों में गानों की जो अहमियत होती है वो एक इंडियन ही समझ सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इसके बिना बिल्कुल अधूरी है यार. हाँ ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए गाने जरूरी नहीं होते, पोस्ट फिटेड होते हैं, बट यार इन जनरल गानों के बिना तो मूवीज इमेजिन ही नहीं कर सकते हम. इसीलिए आज पांच को पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों की बात चल रही है जो बॉक्स ऑफिस पे तो फ्लॉप साबित हुई, बट इसका साउंडट्रैक हैपेंड टू बी अ सुपर डुपर हिट. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म करीब, जो 1998 में रिलीज हुई थी. अब नंबर दो पे बात करते हैं 2003 में रिलीज हुई फिल्म झनकार बीट्स के बारे में, जिसे सुजॉय घोष ने डायरेक्ट किया था. बाकी नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन विशाल शेखर के अमेजिंग डुओ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इसी फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया था भाई, which was an absolute delightful tribute to Pancham Da as well. भाई इस फिल्म के गाने like सुनो ना या फिर तू आशिकी है कुछ ऐसी melodies हैं जिनको हम शायद अपने सपने में भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इन गानों ने हमारे दिल में अपनी जगह बनाई है यार. तो चलो अब इसी प्यार को जरा आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं नंबर तीन पे फिल्म झूम बराबर झूम की, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाई शाद अली, जिसमें बहुत ही अमेजिंग ensemble ऑफ स्टारकास्ट थे लाइक अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा, बॉबी देओल, लारा दत्ता एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काजल लगाए हुए, बोहेमियन हैट पहने हुए अमिताभ बच्चन सर, बोले तो हमारे बिग बी. बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म कुछ खास काम नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे. लेकिन फिल्म का म्यूजिक भैया ओहो, शंकर एहसान लॉय ने तो आग ही लगा दी. अब वो इस फिल्म का टाइटल ट्रैक हो या फिर बोलना हल्के हल्के या फिर टिकट टू हॉलीवुड या फिर किस ऑफ लव, किस ऑफ लव, ऑनेस्टली मुझे इस फिल्म के हर गाने रटे हुए हैं. Anyway, अगर आप भी मेरी इस लिस्ट में कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी. मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अगर इन फिल्मों के गाने नहीं होते ना तो शायद इनको कोई याद ही ना करता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं, मूवीज हैं, उसमें जो गाने, जो साउंड ट्रैक होता है, दैट इज रियली रियली रियली रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से या तो मूवी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है या फिर गुड़गुड़ गोते खाती है। बट हाँ, ऑन अ कॉन्ट्रारी, देयर हैव बीन फिल्म्स जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट उनके साउंड ट्रैक्स वो सुपर डुपर हिट। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी करीब, नंबर दो पे हमने झनकार बीट्स की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट झूम बराबर, एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, नंबर चार पे अब बात करते हैं फिल्म अनवर की, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय मनीष झा। वेल, इस फिल्म में सिद्धार्थ कोयराला और नोहित साइरिसी लीड रोल्स में थे एंड ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताती हूँ, इस फिल्म का प्लॉट मुझे तो ठीक अच्छा अच्छा लगा था, काफी सही ट्रीटमेंट था, बट उससे भी ज्यादा चुम्मेश्वरी वॉज द एल्बम यार। अब वो रूप कुमार राठौड़ की आवाज में मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे ओहो, या फिर शिल्पा राव की आवाज में तुसे नैना लागे पिया सावरे अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ मैं कसम से। एनीवे, इस मूवी से आगे बढ़ते हुए नंबर पांच पे अब बात करते हैं फिल्म यादें की, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था एंड इट रिलीज्ड इन द ईयर 2001। बाकी फिल्म में म्यूजिक था अनु मलिक का एंड भाई साहब, अगर प्रॉपर मूवी की बात करें तो इट वॉज अ क्रिटिकल एंड कमर्शियल फेलियर, बट मूवी का साउंड ट्रैक वॉज अल्टीमेट गजब का ओ हो टाइप्स। अब वो फिल्म का टाइटल ट्रैक हो या फिर ए ली रे ली या फिर जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले भाई साहब, तभी मैं कहती हूँ हम इंडियंस ना किसी फिल्म को बिना गानों के डाइजेस्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली अगर वो फिल्म एक कमर्शियल मूवी हो तो। बाकी अगर आपको मेरी इस लिस्ट में कुछ और एडिशन करना हो देन फील फ्री टू डू दैट यार, MIRCHISHRUTI।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। यार, इन्होंने तो मीडिया से ब्रेक लिया था, वो भी एक नहीं दो नहीं 18 महीनों के लिए, लेकिन अब तो ये स्टोरी और पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह की। यार, सो बेसिकली आदित्य धर डायरेक्टोरियल इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर जो है इज हेडिंग टू जापान, क्योंकि 10 जुलाई को ये फिल्म वहां भी रिलीज होगी, जिसके बारे में रणवीर ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया। एंड दैट मेड मी थिंक कि भाई, इन्होंने तो 18 महीनों का ब्रेक लिया था फ्रॉम मीडिया, बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज्ड कि मीडिया और सोशल मीडिया में डिफरेंस होता है। श्रुति, बाबा निराला की कहानी में और ड्रामा बढ़ेगा विद सीजन 4। वेल, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश झा की मच लव्ड सीरीज आश्रम के बारे में, जिस फ्रेंचाइज के फोर्थ पार्ट की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। द टेंटेटिव डेट इज अराउंड मिड अगस्त। लेकिन भैया, सबसे पहली चीज जो इस टीजर के बारे में मैंने नोटिस की इज द बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसने मेरे दिल में एक्साइटमेंट का लेवल और भी ज्यादा ऊपर कर दिया है। बाकी इमरान हाशमी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है यार, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ फीलिंग, ही इज एन एक्सपीरियंस। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: शाम शानदार. लेट्स गो.

मंडे से लेकर आज तक एक ही फीलिंग चल रही है, बस फ्राइडे आ जाए। शाम शाम तो लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पिछले 4 दिन से ऑफिसेज में काम तो हो रहे हैं, लेकिन कॉन्वर्जेशंस कुछ और ही चल रहे हैं। व्हाट आर योर वीकेंड प्लान्स? फायरवर्क्स देखने जा रहे हो या नहीं, या रोड ट्रिप कितने बजे है? और आज वो फ्राइडे फाइनली आ गया। यार मुझे ना लॉन्ग वीकेंड की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि उसकी एक्साइटमेंट सिर्फ फ्राइडे को नहीं आती, पूरा हफ्ता उसका ट्रेलर चलता ही रहता है। कभी प्लानिंग में मज़ा आता है, कभी पैकिंग में, कभी बस काउंटडाउन देखने में, और कभी बिना अलार्म के उठने में। जी हाँ, तो वो लॉन्ग वीकेंड वाला फ्राइडे आ चुका है। तो आप भी बताइए दोस्तों कि लॉन्ग वीकेंड आपके लिए ऑफिशियली कब शुरू हुआ था? कल शाम से या फिर मंडे से ही शुरू हो चुका था? डीएम मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस लॉन्ग वीकेंड की ओपनिंग क्रेडिट शुरू करते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Isca bana, usca bana, saca bana. Gambana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो देख, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो
2: जब डर गया था
1: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
1: वाली बातें कर रहा है क्या?
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
2: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
1: यार।
3: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: दोस्तों, हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे ना एक बड़ा स्ट्रगल होता है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज जब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तब बात समझ आई कि फ्रीडम का सपना भी ना एक दिन में पूरा नहीं हुआ था। उसके लिए हिम्मत चाहिए थी, हौसला चाहिए था, और हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ते रहने का जज्बा चाहिए था। और शायद ज़िंदगी भी ना कुछ ऐसी ही है, कभी कभी जब प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है ना, तो एक बार खुद से ये पूछ लेना चाहिए कि क्या ये प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि मैंने सपने ही थोड़े बड़े देख लिए। क्योंकि छोटे सपने अक्सर हमें कंफर्ट देते हैं, लेकिन बड़े सपने हमें बदल देते हैं। तो जब भी कोई नया चैलेंज आए ना, तो ये जरूर सोचना चाहिए क्या ये चैलेंज हमें रोकने आया है या हमें उस इंसान में बदलने आया है जो हम कब से बनना चाहते थे। तो आप भी बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा सपना है जिसके लिए आप आज भी डटे रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टा @SIDDHI। और चलिए उन्हीं सपनों और उन्हीं हौसलों को सलाम करते हुए सुनते हैं ये अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है? कुछ दिन ना बस लकी होते हैं। शाम शाम तो लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी लकीली फ्री कॉफी अपग्रेड मिल जाती है, कभी पार्किंग एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मिल जाती है, कभी सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन मिल जाते हैं, तो कभी रात को फायरवर्क्स एकदम क्लियर नजर आते हैं। तब लगता है कि आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। और शायद इसीलिए हॉलीडेज हमें इतने पसंद होते हैं, क्योंकि हॉलीडेज का मजा ही तब आता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशियां मिल जाए। और अगर इस 4th of July आपकी लकी लिस्ट में एक और सरप्राइज ऐड हो जाए तो? जी हाँ दोस्तों, इस 4th of July के सेलिब्रेशन में RK ज्वेल ला रहे हैं थोड़ी और एक्साइटमेंट। आपको बस विजिट करना है RK ज्वेल्स एट 1377 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी, एंड यू विल गेट टू स्क्रैच अ कार्ड एंड गेट एक्साइटिंग ऑफर्स। और मजे की बात तो यह है कि इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोई परचेस करने की जरूरत नहीं। यू विल डायरेक्टली गेट टू स्क्रैच अ कार्ड एंड अवेल एक्साइटिंग ऑफर्स। तो हो सकता है 4th of July आपका लकी डे हो, तो जल्दी से विजिट कीजिए RK ज्वेल्स एट 1377 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी। और मुझे जरूर बताइए कि लकी होने के बाद वो कौन सा गाना है जो आप सुनना पसंद करोगे। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि RK ज्वेल्स जा रहे हो तो लकी तो होगे। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
1: या ऑफ कोर्स।
2: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
2: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ,
2: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं, यहाँ तू मजे ले रहा फोन करके।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो अमेरिका अपनी 250th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, फायरवर्क्स आर ऑलरेडी ऑन द रोल। लेकिन इंडिपेंडेंस ना सिर्फ एक देश के लिए नहीं, हम सब के लिए भी एक रिमाइंडर है कि हर इंसान अपनी लाइफ में थोड़ी और फ्रीडम ज़रूर चाहता है। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रीडम टू प्लान बेटर और फ्रीडम टू मेक स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस। और कभी कभी उस फ्रीडम की शुरुआत किसी नए चीज़ से नहीं, बल्कि जो पहले से है उसे और भी बेहतर बनाने से होती है। और होम ओनर्स के मामले में भी एक ऐसा ही डिसीजन हो सकता है, रीफाइनेंसिंग। लेकिन राइट मोमेंट कैसे पहचाने और कब रीफाइनेंस करना वाकई में फायदेमंद होता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, वैसे तो हर इंसान की एक जन्मभूमि होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की एक कर्म भूमि भी होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज अमेरिका अपनी 250th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है, और हम सबकी स्टोरीज यहाँ पर अलग अलग है। कोई पढ़ने आया है, कोई सपना लेकर आया है, कोई फैमिली के लिए आया है, लेकिन एक बात ना बहुत ही कॉमन है, इस देश ने ना हम सबको अपनी मेहनत से कुछ नया बनने का मौका जरूर दिया है। और इसीलिए इंडिपेंडेंस डे सिर्फ हिस्ट्री का सेलिब्रेशन नहीं, पॉसिबिलिटीज का भी सेलिब्रेशन लगता है। आज ग्रेटिट्यूड का दिन है उन अपॉर्चुनिटीज के लिए, उन लोगों के लिए और उन सपनों के लिए जो इस कर्म भूमि ने हम सबको दिए। तो आप भी बताइए दोस्तों कि अमेरिका में आकर ऐसी कौन सी एक चीज सीखी जिसने आपको हमेशा के लिए बदल दिया। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। एंड 4th of July के सेलिब्रेशन को बॉलीवुड के सुरों से एक खूबसूरत सल्यूट करते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

आजादी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स का वर्ड नहीं, कभी कभी वो रोज की जिंदगी में भी महसूस होती है। शाम शादा लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धिया। एंड यस, वी आर सेलिब्रेटिंग 250th इंडिपेंडेंस डे फॉर अमेरिका। लेकिन उसी के साथ ना फील होता है कि एवरीडे लाइफ में भी ना कुछ कुछ छोटी फ्रीडम्स है जो हमें इंजॉय करने मिलते हैं, जैसे कि अलार्म के बिना उठना, बिना जल्दी के चाय पीना, फैमिली के साथ पूरी शाम बिताना, या फिर बस कार में निकल कर कहना कि देखते हैं आज ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। क्योंकि कभी कभी फ्रीडम का मतलब सिर्फ इतना भी हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए क्लॉक को भूल जाओ, इग्नोर कर दो, और शायद इसीलिए लॉन्ग वीकेंड्स इतने स्पेशल लगते हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी ना सिर्फ डेडलाइन से नहीं, डाउन टाइम से भी बनती है। तो इस वीकेंड खुद को थोड़ा वक्त जरूर दीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपके लिए वीकेंड की सबसे बड़ी लग्जरी क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस छोटी वाली आजादी की फीलिंग को बॉलीवुड के खूबसूरत गाने के साथ सेलिब्रेट करते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डी

शेड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सीनियोरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Milchi, burka. Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तू इतनी धीरे के बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आपका फायदा है।

0: नहीं किया था।
1: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी, आप खुद आए थे?
0: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
1: भैया इसका बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
0: जाना जरूरी है?
1: कहाँ जा रहे हो?
0: दुबई।
1: अच्छा तो दुबई जाना है
0: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
1: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
0: हाँ ठीक है ठीक है,
1: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
0: आपने सही कह रहे
1: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
0: नहीं बोलना।
1: भाई साहब एक बात बताऊँ?
0: बताओ।
1: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
0: मैं तो पागल है क्या?
1: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
0: करवा देना भी है आपसे।
1: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे।
0: सॉरी सॉरी सॉरी।
1: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
0: ओके ओके,
1: आई लव यू।
0: आई लव यू टू।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माई माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज़ और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और 2008 में एक ऐसा ही एल्बम बना था जिसका यार हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। बात हो रही है दोस्ताना मूवी की, या जिसका म्यूजिक दिया था विशाल और शेखर ने, और जिसको प्रोड्यूस किया था हमारे करण जौहर ने। वैसे तो यार शराब एंड बाउंस इस मूवी का सबसे ज़्यादा फेमस गाना था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मायामी जा रहे हो और जॉन को इमेजिन ना करो, शिल्पा शेट्टी को इमेजिन ना करो, और ये गाना बैकग्राउंड में प्ले ना करो। लेकिन और एक गाना है इस मूवी का जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फन है, एंड दैट इज मादा लाडला बिगड़ गया। मतलब माँ को अगर डायरेक्टली आपको डांटना नहीं है तो आजकल माएँ मादा लाडला बिगड़ गया ही कह देती है। और जिस तरह से किरण खेर ने चिल्ला कर जोर से कह दिया था हाय रब्बा मैनु चख ले यार, उस वजह से वो लाइंस एक्चुअली गाने में थी ही नहीं, लेकिन वो इतने फीलिंग्स के साथ बोली गई थी कि विशाल शेखर ने डिसाइड किया कि ये जो पैच है ये हम गाने में एक्चुअल गाने में भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए बीच बीच में आपको किरण खेर की आवाज़ भी आएगी कि हाय रब्बा मैनू चख ले। बस माँ के जो फीलिंग्स है उसे विशाल शेखर जैसे कंपोजर्स भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उनका पैच उस गाने में रखा और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये गाना हिट हुआ है। तो चलिए सुनते हैं मादा लाडला बिगड़ गया फ्रॉम दोस्ताना। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी। टेल मी ऑन इंस्टा एट @RJMirchiSiddhi और तब तक के लिए मादा लाडला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची

0: भाई कौन बोल रहा है यार?
1: अरे यार मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
0: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
1: ओ मेरी बात
0: कौन
1: सुन,
0: बात कौन कर रहा है?
1: ओ महेश।
0: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
1: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
0: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
1: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
0: अरे तो
1: जब डर गया था
0: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
1: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
0: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
1: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
0: फिर वही बात को लेकर आ गया?
1: नहीं मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
0: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
1: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। चुनो मैंने तुझसे
0: वाली बातें कर रहा
1: है क्या? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
0: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
1: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
0: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
1: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
0: भाई तू है कौन?
1: नहीं नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
0: हाँ रॉन्ग नंबर है।
1: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
0: रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
0: अरे रॉन्ग नंबर, अरे यार
1: बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है निकल तू,
0: चल काम कर, चल।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था 2008 में। एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, That is a Desi Girl, sung by Shankar Mahadevan, Sunidhi Chauhan and Vishal Dadlani. ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम भी बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी, देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप मादा लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखो ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शमशाद लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हाँ, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कम्पोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कम्पोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैग लाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी हाँ, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी IDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची।

हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्च ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉनस्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब मिर्ची।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Navirbala, burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: ऑफ कोर्स
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने नहीं है। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखूंगा,
3: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ,
3: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं, यहाँ तू मजे ले रहा फोन करके।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता. सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विथ यू. लेट्स गो.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है, टेंशन किस बात की? क्लब मिर्ची है ना? DJ Richard, मिर्ची और योंतिका, आपके पक्के दोस्त. Let's go, baby.